अब अगर किसी ने कोई हरकत की तो गोलियों से फूंक दूंगा। यह सब मेरा प्लान था लंगड़े। इस ड्रामे के पीछे तेरा दिमाग काम कर रहा था। अब यह ड्रामा खत्म हो चुका है। बहुत मजे कर लिए। अब सारी उम्र जेल की चक्की। चलो तमाम।